सारे पासियों आसां टुट जान ते फिर तैनू गुरु दिसदा है। नहीं बई, जिम्मे कम पैण ते गुरु नूं सिमरदा है उवें गुरु नूं रोज सिमरिया कर, फिर एक बारी भी गुरु नूं आख देवेगा ना महाराज औखी घड़ी तो बचाई ते सतगुरु तैनू तत्ती वाह नहीं लगण देंगे। प्रभ से उला करे हो।

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेहने मारदे ने।

गुरु अर्जन देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जन देव जी

ते ए गुरगद्दी तुहानू नहीं मिली पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन कीता हुक्म मन्या ते गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बन गए। प्रिथी चंद करम कौर दी गल सुन के हसे। करम कौर प्रिथी चंद नू अपने घर की छत ते लै गए और कहन लगे ऐ देखो तुहाडे छोटे भरा गुरु अर्जन साहब दा घर किन्ना कीमती समान होया, काश ये सब कुछ साडे कोल हुंदा। प्रिथी चंद हस पए और हस के उची सारी

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहे? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरुवर जी साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बा वचन कीता, गुरु क्या नू किधरू भाजड़ा पै गया। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना कीती। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जन साहब नू कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं कीती, सगा कहा कि गुरुआं नू किधरू भाजना पै गई, गुरु के महल नू

और बाबा बुड्ढा जी, आज आप अपनी जगह तो उठ के अगा हुए और पाज के माता गंगा जी दे सिर तो।

प्रभु जी दे मार्ग ते चलदियां चलदियां जग्यासु नूं इह समझ आ जांदी है कि हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम ही उस लई सब तों वड्डी दवाई है। इसे लई प्रभु दा नाम जपण लई बार बार बेनतियां अते अरदासां करदा है अते मन विच अपनी गलती भी महसूस करदा है कि संसारक झमेलियां करके ओ नाम नहीं जप सकिया। इसलिए बेनती करदिया होया महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी फुरमान करते हैं, औखद तेरो नाम दयाल मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करह प्रतपाल। भाव हे प्रभु मैनू समझ आ गई है कि केवल तेरा नाम ही मेरे लिए सारे दुखां की दवाई है। मैं अनजाण ने तेरी महानता नू नहीं समझिया, ऐ प्रभु तू आप कृपा कर ताकि मेरा जीवन सदा तेरे लेखे लग सके।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाद तो भाई कई मेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्होंने तेरे रस रस गुण गाए हैं उन्होंने तो आपे की भी शुद्ध नहीं रही, उन्होंने तो अपना आप भी विसर गया। इसलिए यह अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गाव, तेरे विच गुआच जावा, तेरे गुण गाउंदे आ।

मोरे हृदय बसो गोपा। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा है भाई, जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं, पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी, जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे, नंद लाल साडा जी करदा कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे, बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा, नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं, ओ बख्शिशां दे दाते, इस कीट नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां, तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन, पर इन्हां विच रस नहीं है। ओ रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकदा है, इसलिए जे टुटे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श। इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन दी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तां कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगदे, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा। उच्चारण करो श्री, इसलिए भाई साहब कहंदे ने, हे कलगीधर पातशाह जे टुटे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई, जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उचारण करो श्री, इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी, दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श। ई दिले बिरयाम मारा शोक दे, भाई साहब कहंदे ने कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है, ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके हुए दिल नूं प्रेम ला, मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहा, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे, घर होवे बाहर होवे, दुख विच होवे सुख विच होवे, हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीता है अम्बरा लज्ज ते दीदार बख्श, छीना अम्बरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी रा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा, श्वासा दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो, आपने कहा कुछ मंग मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगदा है, ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आर जुए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे, क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साई दे मिलन दा प्यार नहीं है। उचारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन, ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह क्योंकि असी कलयुगी जीव हां ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तों वध तेरे गुण गावां, इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभा ला दे, ते फिर एनिया जीभा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन आज करम, तां बिगोयद विश्व हकरा दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं ए मंगा तेरे कोलों के रस रस गुण गावो, ठाकुर के मोरे हिरदे।

आप केस सुखा रहे हैं। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हैं। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान वी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, गम जय मैं गाने हूं। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया है, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा टिकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन, उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है पर लोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां, मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर मेशवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे, साडी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहिए।

एक मुसलमान वीर ने कलम चुकी ते तवी दा हाल लिखना शुरू कीता। गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ओ कहंदे ए उनां दा खेल सी। कौन है चंदू, इतिहासकार ने इतिहास लिखदियां लिखदियां चंदू ते दोष दिता, जहांगीर ते दोष दिता, लेकिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी दास ने बाणी पढ़ी, किसे पंक्ति विच भी किसे नु उलांबा नहीं दिता। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाह, किसे भी थां ते कोई उलांबा नहीं दिता। कहंदे ने के गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ते तवी किस तरह दी सी। अंगारों की मानो तपी लोह पर ही, जो बैठे हुए हैं समाधि लगाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों देग विच आसन लाया, हजूर कहंदे चंदो तैनूं पता है इक गल दा, इक सोने दा ढेला एक सोने दी डली किसे पुरुष ने चाया कि इस डली दे सौ टुकड़े कर दें। उसने उस डली दे सौ टुकड़े कर दिते। हसूर कहंदे ने चंदू सौ टुकड़ियां तो बाद ए दस उसकी कीमत कितनी कटेगी। चंदू लाजवाब सी, किवें दसे एक डली दे सौ टुकड़े कर दिते, टुकड़े सामने पए ने, है ता सोना पर सोने दे टुकड़े हो गए। एहो ही ता पावन शरीर तख्त ते बहण वाला अज चारे पासे शरीर ते छाले हो गए, टुकड़े हो गए शरीर दे, सोने दे टुकड़े हो गए। चंदू चुप है। हसूर कहंदे चंदू जे किसे शरीफ नू मुसीबत विच पा दिता जाए, दुखां दियां दीवारां उदे आसे पासे बना दितियां जान, उदी शराफत कितनी क कटेगी। ता गुरमुख किसे गुरमुख ने लिखिया, शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। की होया जे तू तवी ते बठा ले, की होया जे तू उबलती देग विच बठा ले, की होया जे तू सिर ते रेत पाई, की होया जे शरीर ते छाले हो गए। शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती, करो सोने के सौ टुकड़े के कीमत कम नहीं होते। भला कदे सोने दी भी कीमत घट पई, सौ टुकड़े नहीं भावे कोई हजारों टुकड़े कर देवे कीमत नहीं घट हुंदी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਓ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਓ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ।

मेरा मन तड़फदा है। दर्शना वास्ते रहन नहीं आंदा, पहला पैरा लिखिया लिख के भेज दिता, पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखन बैठे, कहन लगे हुण की लिखा, तड़फता लिखी

लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही उथे तेरी वही कड्डी जाएगी तेरे लेखे जो तू लिखे हैं तू आप लिखे किसे होर ने नहीं लिखे इस वास्ते हुण मनुछा जीवन है नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै नहीं तां साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं।

अमृत हरि काना अमृत वाणी अमयो रस अमृत हरि काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद घन गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गणा तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख।